का शब्द रतन है जित जड़ा शब्द रतन जिस मन लगा हुआ सुबह शब्द से मन गया शब्द।

a vivir aquí. अजय भी साई भी प्राप्ति निराश होके फरीद एक दरख्त दे ठां बैठा है। दरख्त दे उत्ते चिड़िया बोलिया। फरीद निराशता विच सी, मन च ख्याल आया ए क्यों रौला पा रही है। चिड़िया वल तकिया, चिड़िया क्यों रौला पांदियां। पर चिड़िया फिर बोल दी, जंगल च रहने वाले पंछी बोल रहे हैं। फरीद नु गुस्सा आया, चिड़ियो रौला पांदियां हो तुसी मर क्यों नहीं जांदी। कहण दी देरी सी, सारिया चिड़िया धरती ते आके तड़फन लगी। फरीद ने तकिया, हो मन तू केडी भुल कीती, ए भी पंछी ते तू भी पंछी। आखो श्री वाहे, आऊं बलिहारी तिना पंछिया, जंगल जिन्ना वास, कंकर चुगन थल वसन, रब न छोड़न पास। तू केडी गलती की, नाम जपण वाले दे मन च बड़ी कोमलता हुंदी, बड़ा दर्द हुंदा है। दुखीए नूं वेख के दुखी हो जांदा है, सुखीए नूं वेख के निरंकार दा शुकराना करदा है। ए सिमरन वाले दी अवस्था है, बंदगी करन वाले दी अवस्था है। फरीद दे दिल च रहम आया, चिड़ियो उड़ जाओ, कहण दी देरी सी, सारियां उड़ गईआं। अच्छा, मेरे अंदर तो शक्ति आ गई, मार भी दिता ते जवाल भी दिता। हों मैं आई फरीद, तुर पिया गर्मी दी मौसम, सामने पिंड है, पिंड दे बार बार खूह, खूह दे उत्ते एक नौजवान मुटियार पानी पी भर दी। नेड़े आया, इस लड़की वल तक के फरीद ने कहा, बेटा मैनू पानी पिला। पर इस बीबी ने फरीद वल तकिया, पानी दा डोल कढ़िया, बाहर डोल दिता। फरीद ने फिर कहा, बचड़ा मेनू पानी पिला, मेनू डाढ़ी प्यास लगी, मेरे लब सुख दे जांदे। दूजा डोल कढ़िया, भी डोल दिता। फरीद नू गुस्सा आ गया, कितनी गुस्ताख लड़की, इनू पता ही नहीं कि मैं फकीर हां, मैनू प्यास लगी, मैनू पानी नहीं देंदी, डोल देंदी। अखां लाल करके फरीद ने कहा, पानी क्यों नहीं पिलांदी। तीजी वेरी जिसले फरीद ने बचन कीता, तो इस बीबी ने फरीद वल मुखातब होके कहा, ओ फरीदा, कोई ये जंगल दिया निखसमियां चिड़िया ना समझी, जिन्हां नू मार के जवाल लिया, मैं खसम वाली हां। आखो श्री वाहे, फरीद नू पानी दी प्यास तां बुझ गई, ए प्यास लग गई, सोचदा इहदा इह तां मेरा नाम भी जानदी। ते जंगल विच चिड़ियां मारियां ते जवालियां, जिथे इंसान तां की, इंसान दी जात हैवान भी कोई नहीं सी, इहनू किवें पता लग। फरीद ने कहा, बेटी तू अज मेरा मान तोड़ दिता, अला दस तैनू किवें पता लगा। तो इस माई रंग रतड़ी ने कहा, फरीद ए सारी कृपा मेरे पति दी, ए सारी बख्शिश मेरे पति दी है। किस तरह? कहन लगी, मेरी शादी हुई बाबल दा देश छड़ के, मैं अपने साईं दे देश चली गई।

खोजत खोजत भई बैराजन, प्रभ दर्शन को हों फिरों तसाई, दीन दयाल कृपाल प्रभ नानक, साध संग मेरी जलन। माई रजनी ने, माई रंगकड़ी ने किया फरीदा, किसे मुर्शद दी सेवा कर आखो श्री वाहेगुरु, प्राप्ति मुर्शद तू हो गई। कोई गुरु तारण कर, बाबा जी वचन कर दे सन, कितना जप तप क्यों ना कर लेवे इंसान, जितने तक गुरु वाला नहीं बनता वो जप तप सफल ही नहीं होता। कितना कर जी पातशाह ने 21 वेरी तीर्थ यात्रा की थी, गंगा मैया दी स्नान की थी, हर साल जाते सन, और भी कर्म कांड दान पर करते सन, पर बैरागी ने कह दिता सी, ओ बाबा तो ता मेरा जन्म भ्रष्ट कर दिता है, क्योंकि तू निगुरा है आंखों श्री वाहेगुरु, मैं तेरे हथों पानी पी बैठा निगुरा गुरु दी। गुरु मिल गया भाई सबो कुछ, असि गुरु वाले तां बनते हां कि अमृत छक लीए तो आखो श्री वाहेगुरु, फिर अस गुरु वाले बन जाते। गुरु का बड़ा मान है, ये गल च भाई पटा पाया वे कुत्ते दे ओनू कोई फिक्र नहीं, जे पटा ना होवे ओनू फिक्र ही फिक्र। जेड़ा गुरु वाला बन गया वो अपने मालिक वाला खसम वाला बन गया, खसम का बड़ा मान, निगोरे का भी कोई चीज नहीं। लावारस कुत्तियां दे तरां मार मुकाया जांदा है, उन्हां दा जीवन किसे काम आया। गुरु दी वड्डी शक्ति, गुरु दा वड्डा आसरा है, गुरु दा बड़ा मान है। बुल्ले शाह ने लिखिया, ना मैं जब तक पूजा की थी, ना मैं गंगा नहाया, ना मैं पंज नमाजां पढ़िया, ना मैं हज कराया, बुल्ले शाह मैनूं मुर्शिद मिलिया उस एवें चा बख्शाया, एवें जिन उत्ते मेहर करते हुए भाई मेरा स्थान। माई रंगी ने कहा फरीद, कोई गुरु तारण कर चला जा आज मेर, ख्वाजा पीर पूरा गुरु है मुर्शिद है ओनू जाके तारण कर। ख्वाजा पीर दे दर्शन कीते, हे मालिक दे प्यारे हो करो कृपा मेरे उत्ते, आवाज आई फरीद सेवा तू मेवा आखो श्री वाहेगुरु। फिर फरीद रोज अमृत वेले पानी गर्म करके अपने पीर नु इनान करांदा है ख्वाजा पीर। कितना समा हो गया, 12 साल आ जा ईरला दिन है, पीर ने सोचिया भी कसवटी लगाइए, इम्तिहान लगी फरीद दा पूरा अंदरों सेवा करदा के बाहरों करदा, इम्तिहान लिया। अज बारिश हो रही, जिथों अग बाल के पानी गर्म करदा सी अग बुझ गई, किथों लियावां अग, उच्ची थां ते चढ़ गया। दास कई वरी अजमेर जे है सके मुसलमाना दा दूजा मक्का है अजमेर शरीफ, बड़ा सुंदर बनया होया है, ओ जगह भी तकी जिथे फरीद ने उची चढ़ के पहाड़ी ते उते अग दी पाल की थी। दूर वेखे अग दा लिशारा पिया, तुरन लगा, ख्याल आया मना बारिश बड़ी जोर दी, किस तरह पहुंचा। तो फरीद ने उससे ले श्लोक उचारिया,

0: रत नहीं दिल जा तैसे ही ए सुख माया के उज्जो कहा दवा
1: अनु समझ बिगड़ो ना हनी अजू समझ।

इतनी सेवा प्रवान कर वो धन का दे जो भी आप साहेब गुरु ग्रंथ साहब जी की जूरी हजूर विच बैठ के हरी जस हरी कीर्तन बड़ी श्रद्धा ते भावना नाल सबन करो सरदास जी अपने पिछे भाग संबंध है आप वर्गी साध संगत के दर्शन करने का सुभाग प्राप्त होया है जेडे कि गुरु ग्रंथ साहब के रागा के शौकीन है नहीं तो ज्यादातर गुरुद्वारा फिल्मी कीर्तन ही चलता है जिन्हों ने कहने से वे वे रागी हैं संत बनते हैं सब फिल्मी टूना गा रहे हैं महाराज बख्शित कर सारे सारे गुरु से बख्श बराबर रखने कीर्तन सुनने की श्रद्धा बख्शन आओ अंत देवी सरबत माई भाई जितने गुरु चरणा बैठे हो छोलियां लड़के यही अरदास बेनती जो दी करनी है अकाल पुरख अगे इस शक्तिमान परम पिता परमेश्वर जी आप जी कृपा करो सारी छोलियां अपने पवित्र नाम की खैर पाओ जपो सारे कोई

साहिब सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह दा जिन्हां ने यह हुक्म सुनिया नंदेड़ सचखंड साहिब पातशाह दी हजूरी विच सदके जदों तख्त चवर दे मालिक साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब नूं थापिया गया इत्थे प्रेरणा नहीं है। प्रेरणा ते हुक्म दे अंदर बड़ा फर्क है। प्रेरणा किसे नूं कीती जाए वह प्रेरिया जाए ना प्रेरिया जाए उहदी मर्जी। जदों हुक्म किसे नूं सुनाया जाए जां तां हुक्म मन के प्रवान हो जाओ ते जां हुक्म अदूली करके गुनाहगारां दी कैटागरी शामिल हो जाए। हुक्म दा अर्थ दूजा नहीं निकलदा है, या वह मन्या जांदा है ते जां उसकी अवज्ञा हुंदी है। अवज्ञा करन वाले नूं जो सजा हुंदी है यह सारा संसार जानदा। हुक्म लॉ एंड आर्डर नूं कोई ना मन्ने ता जो उसका हशर हुंदा है, जो उहदा वर्तारा वरदा है, किसी भी अग्ञानी तो अग्ञानी पुरश तो भी भुला नहीं। कलगीधर पातशाह दा यह हुक्म है सब सीखन को हुक्म है कि गुरु मानियो ग्रंथ। यह हुक्म कलगीधर दा सुन के उहदा कहाउण वाला कोई गुरु का सिख किसी देह दे अंदर गुरु का विश्वास डकी तुरिया ऐसी कलगी धर दे हुक्म की अदूली करने वाला अपने आप नूं सिख किवें इखला सकदा है। उहदा तां इह हुक्म है गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरां की दे जो प्रभ को मिलवो चाहे खोज इन्हीं में ले। जे गल्लां करनी है, जे बातां करनी है, जे दीदार करना है तो बह जाओ हजूरी विच, सज जाओ आके इशनान करके। जल्दी यह साहब की बख्शिश है भी जदों गल्लां करोगे तुहाडी रसना ती आप ही बोल बोल तुहानू सुनाई जाऊगी, ऐं कर आ ना कर आ मार्ग अख्तियार कर, यह उत्तम है, यह प्रमाणिक है, यह ना प्रमाणिक है, तुहाडी रसना ते बैठ के तुहानू समझाई जाओ। ऐसा होर चतर दुनिया का गुरु कौन हो सकता जिहड़ा तुहाडी रसना नूं वरत के आप ही तुहानू कही जाए, जल्दी बोलण वेले तुहानू ही गुरु बना देवे। कैसा विचित्र साहब सतगुरु का एक करिश्मा है। जिन्हें भी प्रभु नूं खोजना है तो इहदे विच समाया है, राह दसेगा। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दसणगे भी गुरु अकाल पुरख की प्राप्ति का मार्ग की है, आपे दसणगे जो गुरु सतगुरु का जो सिख का, आपे बोलणगे। जिहड़े कहिंदे ने इह बोलदा नहीं इह सुनदा नहीं तो मैं समझा भी रब ने संसारक कन्न तां उहनां नूं दित्ते, पर गुरु ग्रंथ साहिब बोलदा सुनने वाले कन्न नहीं उन्हां नूं दित्ते। नेत्र तां दित्ते पर साहिबां दी दसे सतगुणां दी जोत वेखण वाले नैण नहीं दित्ते। सुन के अमल करन वाली गुरु ग्रंथ साहिब दा ज्ञान करवाउण वाली शब्दावली सुनदा उन्हां नूं संसारक तौर ते तां इंदिरा करन बख्शे, पर साहिब ने गुरु ग्रंथ साहिब दा उपदेश सुन लई नहीं दित्ता। इस लई सब सिखन को हुक्म है कि औते को मथा ते गुरु मानियो ग्रंथ। आओ बीबियां तो शब्द सरवण कर लो ते साहिब सतगुरु पातशाह दी मेहर दा सदका दी चितता करदा नहीं पर बद्धे रुद्धे बाबा जी दी क्योंकि सेहत मैं समझदा वी गुरमुख भुल जांदे ने अपना आपा शरीर दा, जे हरजस ना हुंदा होवे ते संसार दीआं गल्लां बातां होण फिर भावें शरीर दे विच उहनां दी सुता आ जाए ते महसूस करन वी सानूं कुछ खेद है, पर जे शरीर दे विचों शब्द दी टंकार दे नाल कोई गुरमुख सुना के गुरु का कीर्तन ते गुरमुख गुरसिख महापुरख दी आत्मा नूं उहदे असली टिकाणे ते लै जाए उहनूं शरीरक कष्ट भुल जांदे। सो साहिब दी बख्शिश है, मेरी तां इह अरदास है इस गुरमुख आत्मा नूं सतगुरु सदा लंबेरी आजू ते अरोगता बख्शे तां जो असी संगत करके दीदार करके इन्हां दी कमाई दा किश्मा वेख के कदे साडे मूर्खां दी भी सुरत इस पासे नूं पलटे ते असी भी कुछ अपना परमार्थ दा धन पल्ले बन के जिस मार्ग दे उत्ते हर एक ने समय समय अपनी वारी सिर तुरना है असी भी अपनी वारी सिर तुरन तो पहला कुछ ना कुछ पूंजी भी हाज लईए ते जिहड़ी सानू उत्थे कम आ सके। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।

प्यारे गुरुदेव जी, सच्चे पातशाह सतगुरु साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, आप जी अपने इस पवित्र शब्द दे विच ये विचार बख्श रहे हैं, जपहो ता एको नामा, अकाल पुरख वाहिगुरु का नाम जपो, जे नाम नहीं जपते अवर निराफल काम, बाकी सारे काम निराफल और फ्रूटलैस हैं, उन्हों का कोई भी फल नहीं है जे नाम नहीं जपते। इस करके दो पंक्तियां मैं आप जी के सामने अर्ज कीतियां हैं। एक, नाम बिना नरक कहीं न लेख है। नाम तो बिना इंसान किसे कम दा नहीं है, किसे कम दा नहीं, किसे लेखे च नहीं। और दूसरी, नाम बिना सूना घर बार। नाम तो बिना ये शरीर रूप जो कर है ये बिल्कुल सुन्ना है, और इस दे जो गुण हैं इस काया रूपी कर दे वो नाम नु भुलाउण दे नाल हर बिसरत तेरे गुण गले। महाराज जी ने ते बाणी च ये भी आख्या है

0: गुरु दे शब्द दी विचार दी असिस्टेंस दे नाल गाइडेंस दे नाल इस देही नू काढ़, इस नू सही शेप च लिया, इस नू सही कंडीशन च लिया। सो उपदेश नंबर एक, एक देही दे लेवल ते वर्क करना है कि इस देही नू सोधना है।
1: ए मन देही सोध तू गुरु।

हम इस देही दे अंदर है, जब यही तेरे ऑर्डर्स नहीं है, डिसिप्लिन दे विच नहीं है और यही अंदरों गली पई है, तो फिर नाम तू किमें प्राप्त करेगा। नंबर वन, देही नु सो, देही नु काड़, इस नु डिसिप्लिन दे विच लिया। देही तंग बहुत करती, तो बाबा फरीद जी ने पूछा, महाराज आप जी ने की कीता, क्योंकि देही बहुत किस्म दी आवाजा मार दी, कदे कुछ चाहती है, कदे कुछ चाहती है, कदे कुछ चाहती है, क्योंकि इस दी आदतां, इस दे टेस्ट्स, इस दे सुभा रस, जेते रस शरीर के तेते लगे दुख, पर बड़े किस्म दे रस हन जिन्हां दे नाल असी अपनी जो देही नू कमजोर बनाने हैं, इस नू खराब करते जाने हैं। और इस ते अगर कोई बंदा मास्टरी नहीं करता तो यह बड़ी आलसी हो जाती है, बड़ी वीक हो जाती है, आलसी हो जाती है, तो इस तो ज्यादा मेहनत नहीं होती, फिर थक जाती है। कहते हैं इस देही नू सोध, इस दे नाल थोड़ा टफ हो। फरीद साहब आखते हैं

ऐ मां मेरा मन मेरे वस च नहीं। साडे जिहड़े ख्याल हन वह बड़ी शक्ति रखते हैं। ख्यालों का एक ट्रैफिक है, समझ लो असी उस ट्रैफिक के दरमियान खड़े हैं। वो ट्रैफिक सानू हिट करता है, कोई ख्याल किधर नू लै जांदा है, कोई किधर नू लै जांदा है, कोई किधर नू लै जांदा है। हरेक ख्याल का अपना इन्फ्लुएंस है। कोई ख्याल सानू डिप्रैस कर दिंदा है, कोई ख्याल सानू एंगजाइटी दे दिंदा है, कोई ख्याल सानू सैड कर दिंदा है, कोई ख्याल सानू वरीड कर दिंदा है। सब ख्याल ही ख्याल हैं। मन जड़ा है वो टिकाओ च नहीं है, स्टिलनेस दे विच नहीं है। बहुत ध्यान दे नाल सुनना कि मन दे नाल फिर की कीता जाए, इसनू टुकान दी की विधि है, केड़ा अभ्यास है। आओ आप जिन्हों मैं दो तीन लाइना आज अर्ज करांगा उन्होंने लैके ही प्रैक्टिस करना, ताकि सिंपल सिंपल टेक्निक्स अर्ज कीतियां जान, ताकि उन्होंने आप एक्सरसाइज कर सको। लगातार 3-4-6 महीने तक एक्सरसाइज करन दे नाल यू विल फाइंड ए ग्रेट डिफरेंस इन योर क्वालिटी ऑफ माइंड एंड यू विल अचीव स्टिलनेस ऑफ माइंड। अभ्यास की है, वाणी इस तरह आख्या

अपने विचार अस्वारी कीजे। कहिंदे हुण तुसी अपने विचारां दे विच खोए पए हो, उना नालों सेपरेट नहीं हो, विचार अते तुसी एक में खोए पए। विचार आंदा है तुसी उस दे विच रल जांदे। पर इत्थे टेक्निक ये दसी जा रही है कि अपने विचार अस्वारी कीजे, तुसी अलग हो जाओ विटनेस करन वाले, अपने आप नूं सेपरेट कर लो, स्पेक्टेटर बन जाओ अते जो विचार है उना दे उत्ते सवार हो जाओ। दैट यू कीप आई ऑन योर एवरी

eye on your every single thought the minute it creeps in, and what it does inside you, for how long it stays inside you, and then how the second thought is followed by. Can they try to see the whole process of thoughts coming and going? अपने विचार अस्वारी कीजिए, स्नान करके चौंकड़ा लगा के एकांत दे विच बैठ जाओ, अते फिर अपने अंदर जिस तरह से बाहर कोई तुरिया फिरदा है उसनु देख सकते हैं। ख्याल भी तो अंदर तुरिया ही फिरदा है ना, ख्याल भी अंदर तुरिया ही फिरदा है। जिस तरह अपने मकान च कोई तुरिया फिरदा है, असी अलग चेयर ते बैठ के सिर्फ उसनु वाच कर सकते हैं। टेलीविजन दे उत्ते तस्वीरां चल फिर रही हैं, तुर फिर रही हैं, असी अलग चेयर दे उत्ते बैठ जाने हैं ते उसनु उन्हें देखते हैं। इस तरह महसूस करो कि देयर इज अ ड्रामा ऑफ थॉट्स इज गोइंग ऑन एंड यू आर नॉट पार्ट ऑफ इट, यू आर जस्ट विटनेसिंग। अपने विचार असवारी कीजिए, अपने विचारां दे उत्ते असवारी करो, भाव के उन्होंने इनडिफरेंट होके उन्होंने अलग होके जस्ट वॉच दैम। सो पहली चीज तुसी की अचीव कीती है कि यू एंड थॉट हैव बिकम टू डिफरेंट थिंग्स, यू हैव टोटली डिसकोनेक्टेड यूअर सेल्फ फ्रॉम द थॉट्स। तुसी अपने आप नूं थॉट्स तो अलग कर ले, अपने विचार असवारी कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता की होएगा कि थॉट्स का ट्रैफिक आ रहा है, तुसी सिर्फ देख रहे हो कि थॉट आ रहा है, ना उस लई बुरा ख्याल बनाना, क्योंकि ख्याल बनाओगे तो ख्याल च उलझ जाओगे, ना उस लई चंगा ख्याल बनाना, कोई ओपिनियन नहीं फॉर्म करनी, थिंकिंग नहीं करनी, जस्ट प्लेनली वाच दैम। सिर्फ उन्होंने देखना है। अपने विचार असवारी कीजिए दा मतलब है कि अलग होके सिर्फ उन्होंने देखो, तुसी कोशिश करके करन दी देखो, कल तो सवेर तो, और फिर जदों भी वक्त मिले इस अभ्यास नु करना है। अपने विचार असवारी कीजिए, थॉट्स तो अलग होके सिर्फ उन्हां दा जो फ्लो है उसनु देखना है। जदों तुसी देखोगे, थॉट्स नु देखोगे, क्योंकि तुसी थॉट दे नाल कोऑपरेट नहीं कर रहे, उस दे विच एनर्जी नहीं पा रहे, उस दे नाल ज्वाइन इन नहीं कर रहे, इस करके वो थॉट जो है उत्थे अपने आप ही सीज हो जाएगा। थॉट नीड्स योर कोऑपरेशन एंड योर टोटल इन्वॉल्वमेंट, ता थॉट जो है वो स्प्रेड हुंदा है, वधदा है, अगां वधदा है। जे तुसी उस दे नाल ही न रले तो थॉट उत्थे सीज होना शुरू हो जाएगा, और उस तो बाद तुसी देखोगे कि विद इन सैकेंड्स एक होर थॉट आना शुरू होया, बट इन बिटवीन फर्स्ट थॉट एंड सैकेंड थॉट यू विल फाइंड ए वेरी स्मॉल गैप, फ्यू सैकेंड्स का गैप। अते उस गैप के विच जदों के थॉट नहीं है, की है, सिर्फ एक वाचर है जो कि विटनेस कर रहे हैं, जो कि देख रहे हैं। वो वाचर कौन है? वो साड़ी आत्मा है, वो साड़ी बीइंग। सो इन दोज ग्लिम्प्स वी एक्सपीरियंस अवर बीइंग फ्री फ्रॉम थॉट्स। तो जितना जितना ये अभ्यास बढ़ाते जाओगे उतना उतने वो गैप्स वधदे जाएंगे, जदों गैप्स लंबे होंदे जाएंगे तो उस टाइम दे विच सिर्फ जो एक्सपीरियंस करने वाला या मंदिर में कौन बसाई, जिसलिए एक असी वंडर करते हैं कि इस मंदिर च कौन रहिंदा है, वह है आत्मा, वह है वाहिगुरु जी की अंश, वह है वाहिगुरु जी की जोत। सो देन वी विल एक्सपीरियंस द एक्सपीरियंसर, जो एक्सपीरियंस कर रहा है, जो थॉट्स नु देख रहा है, फिर असी उसनु पावांगे उत्थे मौजूद। उस दे नाल साडा ध्यान, साडी सुरती दा जिहड़ा कनेक्शन है, वो आत्मा दे नाल जुड़ना आरंभ हो जाएगा। तो टेक्निक है, अपने विचार असवारी कीजिए। अते जदों ये अभ्यास कर रहे हो तो आप अचानक पाओ कि तुसी खो गए हो,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥਾਟ ਦੇ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਫੌਰਨ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਔਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਥਾਟ ਆਵੇ, ਮਨ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਹ ਪੰਕਤੀ ਬੋਲ ਦੇਣੀ। ਕਿਹੜੀ?

अच्छी कृपा मुहे करो। एक साखी है, सुकेत मंडी दा राजा आया, कह लगा दसम पातशाह धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी नो मेरे ते कृपा करो। सामने एक सिख सी जो घोड़िया दी लिद हटा के तबेले चो निकलिया सी, वो कवि भी सी, 52 कविया विचो। महाराज कहन लगे राजे नू तेनू ओदे वर्गा बना दिए। राजा कंबिया, कहन लगा महाराज तुसी कृपा करन लगे हो कि कैर करन लगे हो? महाराज ने धन्ना सिंह नू आवाज मारी, भाई धन्ना सिंह जी दर्शन दियो, आओ मेरे कोल। आ गए, कहन लगे भाई धन्ना सिंह जी कुछ मंग लो। धन्ना सिंह कहन लगा तुसी कृपा दे सागर हो, अगे कृपा कीती होर कृपा करो। महाराज कहन लगे तेनू इस राजे वर्गा बना दिए। वो भी कहन लगे तुसी कृपा करन लगे हो कि कैर करन लगे हो? इदे वर्ग। महाराज कहन लगे राजन तू इदे वर्गा नहीं बनना चाहुंदा, ये तेरे वर्गा नहीं बनना चाहुंदा, है दोनों कहते भी कृपा कर। असल दात ओदा नाम है, ये ओनू दिंदा जिहदे ते ओह कृपा कर देवे। इस शब्द विच भी ये मंग मंगी है, ऐसी कृपा मोहे करो, तेरे बख्शिया ओहदे चरण होण ते मेरा मथा लग जाए, सा संगत दी चरण धूड़ प्राप्त होए। ऐसी मंग इस शब्द

प्यारे गुरुदेव, सच्चे पातशाह, सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, गौड़ी चेती महला पहला दा इस शब्द जो आप जी ने श्रवण किया है, इस शब्द के द्वारा साड़ी जिंदगी का जो एक सफर है अते ओ सफर की मंजिल नू असी जो खो चुके हैं, उसकी बाबत सानू महाराज एक बड़ी तकड़ी जोल्ट दे के सानू वापस जगा रहे हैं। सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज एक पंक्ति दे विच बयान करते हैं कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है। वो जीवन नू एक यात्रा आखते हैं, अते आखते हैं कि ए सफल हो गई है। इमेजिन करो कि वो किस किस्म की थ्रिल होएगी, किस किस्म का वो प्लेजर होएगा, किस किस्म की स्टेट ऑफ माइंड होएगी जिस दे विच एक चेतना ए अपने जीवन च खुद आख सके, उसनू जी सके, उसनू इम्बाइब कर सके कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है। हाउ मैनी ऑफ अस कैन क्लेम दिस कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई। हाउ मैनी, इनफैक्ट सानू तो यह भी नहीं पता कि जीवन की कोई यात्रा भी है। सफल होना तो बहुत दूर की गल है, सानू यह भी नहीं पता कि असी अपने जीवन की यात्रा च जा किधर नू रहे हैं, मंजिल वल नू या मंजिल तो दूर। बाबा जी ने अपनी बाणी दे विच एक पंक्ति उचारण कीती है जिथे वो आखदे हन असी मंजिल दे करीब ते की जाना, असी मंजिल तो बहुत ज्यादा डिस्टेंट हो गए हैं, बहुत ज्यादा दूर चले गए। पंक्ति सुनने वाली है, कहंदे हन साकत नर प्राणी सद भूखे, नित भूखन भूख करीजे, तावत ताए तावे प्रीत माया, लख कोसन को विथ दीजे। कहिंदे यात्रा सफल ते की करनी, यात्रा सफल उदों हुंदी है जदों यात्रा दी जो डेस्टिनेशन है उत्थे पहुंच जाया जाए, उदों जो यात्रा कंप्लीट हो जाती है, सफल हो जाती है। पर जे यात्रा नालों उसकी मंजिल नालों उसके डेस्टिनेशन नालों जो पाड़ है, गैप है, डिस्टेंस है, दूरी है, वधदी ही जाए, वधदी ही जाए, वधदी ही जाए, इसका अर्थ यह होया कि यात्रु नू ए नहीं पता कि वह जा किधर नू रहा है। बाबा जी ने बाणी दे विच एक जगह आख्या है साडे मतलब कि तुहाडी हालत यह है कि तुहानू ए पता नहीं तुसीं किधरों आ रहे हो और किधर नू जा रहे हो, बस ये आख रहे हो आई एम वेरी बिजी, आई डू नॉट हैव टाइम। कोई पूछे तो कर की रहे हो, दैट आई डोंट नो। जा किधर रहे हो, दैट आई डोंट नो, बट आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। किधर जा रहे हो इसका पता नहीं, किधरों आ रहे हो इसका कोई पता नहीं,
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਚ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

0: सतसंग जी दास ने आप जी की सेवा दे विच 10 दिन रहना है। पिछले 10 दिन ओमान मस्कट जो 10 दिन का लगातार कीर्तन करन दा मौका मिलिया, उस तो बाद कल उत्थे कीर्तन की समाप्त हुई, कल ही फ्लाइट ली और सारी रात ट्रैवल दे विच गुजरी, तो अज इत्थे सुबह पहुंचे हाँ। आप जी दे पहली दफा सिंगापुर विखे दर्शन करन दा सुभाग प्राप्त होया है, ते मेरे धन भाग हन। तो बाकी 10 दिन जो हैं ओ महाराज जी ने जो इस शब्द दे विच आख्या है उसे दी ही एक विचार दी लड़ी रहेगी, अते उस लड़ी नू आप जी कोशिश करना के पूरी दी पूरी सुनन दी कोशिश करना। सो इस टॉपिक दे उते 10 दिन कीर्तन होएगा। आप जी ने बहुत ध्यान नाल शब्द सुनिया होएगा, तो गुरु साहब जी ने साड़ी जिंदगी दे 3 एरियाज नू एड्रेस कीता है। वो केड़े केड़े हैं? बॉडी, माइंड एंड सोल। तिन्ना नू गुरु साहब जी ने इस शब्द दे विच संबोधन किया है। काया नू आख्या है, काया नू एड्रेस किया है, हों तुद आखा मेरी काया, तू सुन सिख हमारी, कि काया दे प्रति भी सानू कुछ समझण दी जरूरत है। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे विच बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी जो सिख्या है काया दे प्रति, कि काया की है, इसका पोटेंशियल की है, इसकी कैपेबिलिटी की है, एक कादे वास्ते मिली है, एक की वस्तु है, असी वो सुनना है ताकि असी अपनी काया नू जिमें वर्तना चाहिदा है उमें वर्त सकी। काया है बहुत एक स्थूल चीज जो नजर आती है, सॉलिड है, ग्रॉस है, माइंड उसको सटल है। गुरु महाराज जी ने इस शब्द दे विच काया नू एड्रेस किया है, फिर माइंड नू भी किया है, मन नू भी संबोधन किया है। कहते हैं सुन मूर्ख मन अजाणा, मन नू जिसले एड्रेस किया तो आख्या कि यह सुधी मूर्खता का ही कारक है, फिर उस दे नाल किवें डील करना है। ते तीसरा हिस्सा है जीड़ा जीव आत्मा, आत्मा नू महाराज जी ने रूह नू सोल नू एड्रेस किया है। सो इन 10 दिनों दे विच असी ये तिन्ने एरियाज जो हैं वो कवर करांगे, तिन्ना उत्ते विचार करांगे, शरीर दे प्रति समझांगे, क्योंकि शरीर अते मन अते आत्मा जितनी देर तक के तिन्ने दे तिन्ने एक हारमोनी दे विच नहीं आ जांदे, एक दूसरे दे नाल ट्यूनिंग नहीं हो जांदे, उतनी देर तक साड़ी लाइफ जो है बहुत कॉन्फ्लिक्ट दे विच, उतनी देर तक साड़ी लाइफ दे विच कन्फ्यूजन है, उतनी देर तक साड़ी लाइफ दे विच परमार्थ नहीं आ सकता। सो समा अज समाप्त है, अज दी विचार आप जी दी सेवा दे विच जो रखी है वो इत्थे ही समाप्त करते हैं। अज तो सिर्फ आप जी नू जो टॉपिक है वो इंट्रोड्यूस किया है कि किस चीज उत्ते 10 दिन कीर्तन होंगे। आप जी वक्त से रोजाना आओ, होर भी संगतां नू लैके आओ ताकि असीं गुरु बाबा जी की जो गुरमत है उसनू सुन सकीए, उसनू विचार सकीए, ते उस तो अपनियां जिंदगियां दे विच जो साडे जीवन का रूहानी पक्ष है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, आत्मक जीवन है, उस वल नू असीं कदम वधा सकीए, अपने जीवन की यात्रा असी भी सफल कर सकी। आज आप जी एक शब्द जरूर नाल लेके जायो, क्योंकि सारा कीर्तन तो जांदे जांदे याद नहीं ना रहा करदा, पर एक पॉइंट ते नाल लेके जा सकते हो जिसनू असी आख सकते हैं कि फूड फॉर द थॉट। वो ए है कि गुरु अर्जन देव जी महाराज आखते हैं कि जिंदगी एक जर्नी है। वो कहते हैं मेरी सक्सेस इस गल दे विच है, मैं सक्सेसफुल इस करके हाँ कि मैं अपनी जिंदगी दी यात्रा दी मंजिल ते पहुंच गया हाँ। ਹੁਣ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪੌਂਡਰ ਕਰਨਾ, ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਹਾਂ। ਬਸ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ ਸਕੂਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੇਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
1: You are listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.

हमारी अमृत प्यारी, हमारी अमृत धारी, गुरु निमख न मनते तारी रे। ये पावन शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विचों आप जी ने सरवण किया है। अज दा ये दिन सारिया संगतां वालों मनाया जा रहा है। अज दे दिन सतगुरु पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने हजूर साहब नदेड़ साहब गुरु ग्रंथ साहिब है, तो आओ उस संबंध विच ही एक दो शब्द साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दे बड़े प्यार नाल सरवण करो।